0: और अजय जी डिंपल जी के बारे में काफी जो जानकारी लाए हैं, आइए सुनते हैं।
1: इससे पहले मैं ये कह दूं संजीव जी कि हम आज दो पहेली रन कर रहे हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो पहली पहेली के दो टिकट मिलेंगे
0: जी।
1: विजेता को।
0: हाँ
1: नाटक जो है बॉम्बे टॉकीज,
0: अच्छा,
1: उसके दो टिकट मिलेंगे। तो सवाल है कि कपूर खानदान जो था
0: जी
1: हिंदी फिल्मों का,
0: जी
1: उनका एक वो था रंगमंच का थिएटर,
0: हाँ,
1: उस थिएटर का नाम बताइए। जो कपूर खानदान का थिएटर है
0: बम्बई
1: वो
0: में,
1: बम्बई
0: मैं
1: में,
0: उसको
1: हाँ
0: थोड़ा आसान कर देता हूँ
1: हाँ उस थिएटर का नाम बताइए। और
0: जी।
1: विजेता को मिलेंगे दो टिकट नाटक बॉम्बे टॉकीज के।
0: अच्छा
1: क्योंकि रंगमंच रिलेटेड है तो
0: जी,
1: हमने सोचा चलो कि सवाल भी
0: प्रश्न
1: उसी
0: भी
1: हिसाब से
0: जी।
1: रखते हैं। दूसरी पहेली है
0: हाँ
1: जो हमारे जो पिछली बार कार्यक्रम में आए थे केदार जी, उनका
0: हाँ
1: कार्यक्रम हो रहा है गाता रहे मेरा दिल, तो उसी
0: अच्छा
1: उस कार्यक्रम के दो टिकट मिलने वाले हैं।
0: जी,
1: और पहली है आज के विषय से संबंधित, तो डिंपल कपाड़िया की बहन का नाम बताएं।
0: जो बहुत ही आसान सा सवाल है दोनों, और
1: आपके लिए अब बड़ी हर चीज़ आसान है।
0: नहीं, लेकिन चलिए, आप सब श्रोताओं से हम लोग विशेष अनुरोध करते हैं कि आप इस पहेली में भाग लें और दो टिकट जो है नाटक के और दो टिकट म्यूजिकल प्रोग्राम के हैं, एक अच्छी सुहानी शाम की जो है वो आपकी शुरुआत हो सकती है। तो चलिए एक और खूबसूरत सा गाना सुनते हैं फिल्म सागर से।

0: करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल।
1: श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।
2: Every Sunday, listen to the Hindi show 98.5 FM Radio 2000.
3: हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक।
4: तो श्रोताओं, एक बार पहली और दोहरा दें आपके लिए। आज हम पहली दो, एक नहीं दो दो पहले लेके आए हैं।
1: हाँ।
4: पहली वाली ये है कि एक तो डिंबल कपाड़िया, जिनके ऊपर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी बहन का नाम बताइए
1: जी।
4: और जो विजेता होंगे उनको दो टिकट मिलेंगे केदार जी के कार्यक्रम गाता रहे मेरा दिल के म्यूजिकल प्रोग्राम।
1: बहुत अच्छा।
4: और दूसरी पहली है
1: जी
4: कि जो जो राज कपूर की फैमिली, मतलब कपूर खानदान है
1: जी,
4: में उससे जुड़ा थिएटर जो था
1: जी,
4: उस थिएटर का नाम बताइए
1: जी।
4: ठीक है। और उसको विजेता को दो टिकट मिलेंगे दिनचर्या जी के प्ले बॉम्बे टॉकीज़ के, दो टिकट मिलेंगे।
1: बहुत शानदार। तो चलिए गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, ये गीत था फिल्म रुदाली से और लिखा था गुलजार ने और गाया था लता मंगेशकर ने।
1: तो डिंपल जी के पिताजी थे
0: जी,
1: उनका नाम था चुन्नीलाल कपाड़िया। तो मतलब डिंपल ने पहले से ही कहा था कि मुझे फिल्मों में जाना है।
0: तो क्या वो मतलब फिल्मी फैमिली थी या
1: फिल्मी
0: कोई
1: फैमिली नहीं थी, बिजनेसमैन थे वो।
0: अच्छा।
1: तो पर डिंपल जी को मतलब था शौक था जाने का। तो पर उस जमाने में फिल्मों में जाना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी उस जमाने में, मतलब समझ लीजिए 70s 80s की बात है फिर भी। तो फादर ने उनको फुल सपोर्ट किया पूरा। और ये जो पिताजी थे उनकी भी थोड़ी सी मतलब वो है कि पहले वो आगा खान को मानते थे, इस्माइल पर उन्होंने फिर उसके बाद में सनातन धर्म अपना लिया था।
0: ओके।
1: तो उन्होंने अपने बेटी को पूरा सपोर्ट किया कि भाई जहाँ मैं तेरे पास सपोर्ट रहूँगा। और इस बात से उनका बहिष्कार हुआ
0: अच्छा।
1: पूरे समाज में, क्योंकि बेटी को उन्होंने फिल्मों में भिजवाया।
0: ओके।
1: ये इस बात को लेकर के तब जो मतलब फादर के इंकरेजमेंट से उन्होंने फिर ऑडिशन वगैरह दिए, फिर फिल्मों की तरफ रुख किया था।
0: ओके।
1: तो
0: और ये रुदाली पे शायद कोई अवार्ड भी
1: मिले, कई सारे अवार्ड मिले उनको, रुदाली पर भी था। तो बॉबी पिक्चर थी
0: जी,
1: उसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, पहली पिक्चर में
0: अच्छा
1: फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिर जैसा हमने बताया था कि उन्होंने फिल्मों से अवकाश ले लिया था और मतलब 14-15 साल की उम्र में शादी हुई थी। फिर वो राजेश खन्ना का घर छोड़ के चली गई।
0: अच्छा।
1: मात्र उस टाइम पे शायद उनकी उम्र 25 साल थी।
0: ओके।
1: तो दो बेटियाँ थी उनकी। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं अपने करियर को फिर से शुरू करूँगी। मतलब किसी औरत को मतलब कितनी मुश्किल सिचुएशन है कि जे वो अपना पति का घर छोड़ के आई है, दो बच्चे हैं, और फिर उन्होंने कहा मैं अपनी पहचान बनाऊँगी। तो इसलिए उन्होंने फिल्म साइन करी सागर।
0: अच्छा। ओके। सागर वाज द कमबैक फिल्म,
1: सिप्पी ने बनाई थी
0: जी।
1: तो हालांकि इतना बड़ा नाम था डिंपल कपाड़िया का, तो उन्होंने बाकायदा ऑडिशन लिया उनका।
0: अच्छा।
1: और ऑडिशन में बहुत घबराई हुई थी ये डिंपल। तो पर उनको उनकी मतलब ऑडिशन पसंद आया तो उन्होंने साइनअप किया। उसमें दो हीरो थे आप जानते हैं, एक तो कमल हसन थे
0: और ऋषि कपूर।
1: ऋषि कपूर
0: जी।
1: तो उसको बनने में टाइम लगा सागर पिक्चर को। तो वैसे वैसे तो उनके करियर की दूसरी पिक्चर होती
0: जी,
1: पर बहुत डिले हो गई पिक्चर बनने में। तो सागर की स्टोरी तो आप मतलब जानते हैं, वो दो लोगों से के बीच में मतलब ट्राइंगल था। तो या तो मैं दोस्त के साथ जाऊं या फिर मैं जिसको प्यार करती हूँ। तो कमल हसन था और ऋषि कपूर थे। तो जो सागर डिले हुई, इस बीच में उनकी दो पिक्चरें और आईं।
0: अच्छा।
1: जिसका नाम था एतबार और जख्मी शेरनी।
0: ओके।
1: हाँ, पर वो शायद उतनी चली नहीं। और फिर सागर ने तो मतलब धूम मचाई। तो चंजीव जी कोई गाना वाना सुना
0: तो
1: रहे हैं?
0: अब आपने एतबार का नाम लिया तो आपको फिल्म एतबार का गाना, बहुत ही सुंदर गाना है।

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

0: श्रोताओं, ये फिल्म एतबार से लिया था। जी हाँ, इसको गाया था आशा भोसले और भूपिंदर ने, और इसमें जो एक्टर थे डिंपल कपाड़िया और सुरेश ओबरॉय। चलिए सुनते हैं हमारे एक स्पॉन्सर का संदेश।
1: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomk.org.au। धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम केयर का संदेश। तो अजय, गाना खूबसूरत था, बहुत ही मजेदार
2: भूपेंद्र का गाना
0: जी। और आज एक मैं, आप तो जानकारी लाए थे, मैं भी एक छोटा सा ऑडियो फीचर लेके आया हूँ डिंपल कपाड़िया के ऊपर। तो आइए सुनते हैं उसको, क्या बोलते हैं।
2: बिल्कुल।
3: किसी ने कहा कि ये तो सिर्फ बॉबी है, किसी ने कहा ये है मिसेस राजेश खन्ना, पर इनकी अलग पहचान बनी। पूरा नाम इनका डिंपल चुनीभाई कपाड़िया, जन्म 8 जून 1957 में हुआ।
4: मैं जब चमकती तो लोग आंख बंद कर लेते हैं, कड़कती हूँ तो कान बंद कर लेते हैं, सर पर गिरती हूँ तो दिल थाम लेते हैं। हाँ,
3: ये अपने माँ बाप की सबसे बड़ी संतान है। 4 बच्चों में ये सबसे पहले नंबर पे आती हैं। इनके पिता चुनीभाई कपाड़िया एक बिजनेसमैन रहे।
4: बाबूजी, मेरा नाम बिजली है, मैं चंदनपुर के रहने वाली हूँ। मैं शहर में मोहन को ढूंढने के लिए आई हूँ। मेरे पास मोहन का पता नहीं है, मगर उसकी तस्वीर है।
3: इनकी एक बहन का नाम रहा सिंपल कपाड़िया, दूसरी रही रीम और तीसरे रहे भाई जिनका नाम रखा मुन्ना। परिवार मुंबई के ही सेंटा क्रूज इलाके में रहा करता था और डिंपल की पढ़ाई हुई सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल में। इनके पिता एक नामी गिरामी आदमी थे, जिसकी वजह से इनकी परवरिश भी खूब जबरदस्त तरीके से हुई।
4: तेरी इसी अदा ने तो हमें दीवाना कर दिया शुरू था।
3: फिल्म इंडस्ट्री में भी इनके बड़े गहरे ताल्लुकात थे, और जब राज कपूर साहब फिल्म बॉबी के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे, तब अक्सर डिंपल कपाड़िया अपने मन में कहा करती थी, बॉबी का रोल तो मुझे ही मिलेगा। और ठीक वैसा हुआ भी। डिंपल कपाड़िया को नरगिस जी की फिल्में दिखाई गईं और कहा गया कि इस तरह की इनोसेंस चाहिए स्क्रीन पर। और 15.5 साल की उम्र में डिंपल कपाड़िया ने वो कीर्तिमान स्थापित किया जो कोई अभिनेत्री करने की सोच भी नहीं सकती। वो और बात है कि उसके साथ राज कपूर जैसा शोमैन भी होना जरूरी है।
5: तुम सच कहती हो?
3: राज कपूर की बॉबी ने हंगामा मचा दिया। मेरा नाम जोकर के बाद यह राज कपूर का जवाब था। ऋषि कपूर और डिंपल की जोड़ी ऐसी जमी कि लव स्टोरीज की बाढ़ ही आ गई।
4: अरे, इसमें सोचने की क्या बात है, तुमने अपनी पैरवी इतनी अच्छी की। अगर अपने मुकदमों की पैरवी इतनी अच्छी करते तो पता नहीं कितने केस जीत चुके होते।
3: पर इससे पहले बॉबी रिलीज होती, डिंपल कपाड़िया एक अलग ही यात्रा पे चली गईं। राजेश खन्ना साहब उस जमाने के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। ऊपर आका और नीचे काका की कहावतें चल रही थी, और उनकी प्रेमिका अंजू महेंद्रू इनसे अलग ही हुई थी, और राजेश खन्ना के जीवन में आ गई 15.5 साल की लड़की नाम डिंपल।

राजेश खन्ना साहब और डिंपल कपाड़िया ने शादी की। दोनों की उम्रों में काफी फासला था और शादी के बाद डिंपल कपाड़िया एक्टिंग से दूर हो गई। बल्कि फिल्म बॉबी के रिलीज के पहले ही इनकी शादी हो गई थी और ये गृहस्थ आश्रम के अंदर अगली सीढ़ी चढ़ रही थी।

0: डिंपल कपाड़िया तकरीबन 12 बरस एक्टिंग से दूर रहीं। इन 12 बरसों में इनके दो बच्चे भी हुए, बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना और छोटी बेटी रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना साहब का करियर एकदम ऊंचाई पे जाकर लुढ़कने लगा था।
1: आज देखा नहीं जाता, मैं तो घबरा गया हूँ गरीबी देखकर।
0: पारिवारिक समस्याएं बढ़ रही थीं। आए दिन फिल्मी मैगजीन्स में ये खबरें रहती कि ये दोनों अलग हो गए हैं, ये दोनों साथ आ गए हैं, डिंपल ने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया है या फिर वापस लौट कर आ गई हैं राजेश खन्ना के पास। और फिर वो लम्हा आया जब डिंपल कपाड़िया काकाजी से दूर हुई और रमेश सिप्पी की फिल्म सागर में ये नजर आई। इस फिल्म में इन्होंने ऐसा कमबैक किया कि कमाल ही हो गया। एक बार फिर इनके हीरो ऋषि कपूर ही थे, स्विमिंग कॉस्ट्यूम के सीन्स थे, बीच के पास समंदर किनारे के बड़े ही सेंसुअल सीन्स थे, इनकी पहनी हुई लाल साड़ी कौन भूल सकता है, और फिल्म सागर का संगीत भी कमाल कर रहा था। उसके बाद तो इन्होंने और भी फिल्मों में काम किया।
2: आपकी आंखें हवस में बंद कर रखी हैं सीएम साहब, आपके लिए औरत सिर्फ एक जिस्म है और कुछ भी नहीं। आपने जिस्म की हदों के पार कभी झांक कर देखा ही नहीं। आप अपने आप को इस देश का नेता कहते हैं, अरे आपसे तो वो कल का लड़का संजय कहीं महान है। काश मेरी आपसे शादी ना हुई होती, काश मेरी जिंदगी में ऐसा आदमी पहले आया होता।
0: फिरोज खान साहब ने इन्हें अपनी फिल्म में लिया और ये भी कहा कि डिंपल के अंदर बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा स्क्रीन पे बहुत अच्छी तरह से निकल कर आता है।
3: इस जूते को पहचानते हो भूरे लाल? पहचानो इस जूते को। ये वही जूता है जो मैं हकीम चाचा के लिए लाई थी। अब की इसमें नई कील भी लगा दी है ताकि ये जल्दी घिसे ना।
0: महेश भट्ट साहब की फिल्म काश में भी डिंपल कपाड़िया नजर आई थी, जिसकी कहानी में एक ना चलने वाली शादी थी। फिल्म काश में भी डिंपल का अभिनय देखते ही बनता था।
2: मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे पूरा अधिकार है जानने का कि मेरे बिस्तर में मेरी जगह पर कौन सो रहा है।
0: कहां सन 73 में ये माँ बन गई थी और उसके बाद सन 82 में इन्होंने कमबैक करके सबको चौंका दिया।
3: जाने दो ना, बच्चे हैं। अफसोस तो ये है कि अपनी उम्र से पहले बड़े हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं।
0: ये बात भी गौर करने लायक है कि डिंपल कपाड़िया की पहली फिल्म बॉबी के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। एक फिल्म ऐसी थी जिसमें डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना दोनों साथ नजर आते। फिल्म का नाम था जय शिव शंकर, लेकिन कुछ वक्त की शूटिंग के बाद इस फिल्म को डिब्बे में बंद करना पड़ा। डिंपल कपाड़िया की र अक्षर से ऐसी दोस्ती है कि इसे देख सभी को हैरानी होती है। इनके पहले हीरो ऋषि कपूर, पहले डायरेक्टर राज कपूर, हस्बैंड राजेश खन्ना और जिस डायरेक्टर के साथ कमबैक किया उनका नाम रमेश सिप्पी और दामाद राजीव भाटिया, जिसे सब अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं। डिंपल कपाड़िया सिर्फ कमर्शियल फिल्मों में ही नहीं बल्कि पैरेलल सिनेमा में भी नजर आईं। शेखर कपूर की दृष्टि को कौन भूल सकता है, इसमें इन्होंने कुछ बड़े ही हॉट और सेंसुअस सीन्स भी दिए थे। लेकिन रुदाली, अंतरीन, ये वो सारी फिल्में रहीं जिन्होंने साबित कर दिया कि डिंपल एक संपूर्ण अभिनेत्री हैं।
4: अरे तू तो इतना छोटा था, इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ, तू उसका बाप है, देखा? साले बाप बेटे दोनों के दोनों बेशरम। अरे ये उम्र बेटे को समझाने की है कि किसी के टांग पे ना चढ़े, उल्टा तू ही टांग पे चढ़ गया।
0: चाहे इनसे डांस करवा लिया जाए या फिर इमोशनल सीन्स।
4: चुप बोलना भी सीख गया है, इसीलिए गांव छोड़कर आया था, इसीलिए दुर्गा चाची और बरखा को रोता सिसकता छोड़कर आया था, इसीलिए।
0: या फिर कॉमेडी जो कि फाइंडिंग फैनी में जबरदस्त तरीके से नजर आई।
4: ये है हमारे प्यारे लाल जी, इनको निरोध से खानदानी विरोध है। टीवी, रेडियो, अखबार, पोस्टर सब निरोध का प्रचार करते हैं, मगर ये है कि सरकारी बात इनके समझ में नहीं आती। जय धनादन, जय धनादन, जय धनादन, बच्चे पैदा करते चले जा रहे।
0: फरहान अख्तर की पहली फिल्म दिल चाहता है में भी इन्होंने बहुत ही अनोखा किरदार निभाया था और एक बार फिर साबित कर दिया था कि राज कपूर साहब ने इन्हें यूं ही नहीं चुन लिया था, इनकी प्रतिभा थी तभी ये बॉबी बनी थी।
2: और कितनी परीक्षा लेना बाकी है, ईमानदारी की रोशनी ने, सच्चाई की जो ताकत उन्हें दी है, अगर उस पर जरा सा भी दाग लग गया तो दुनिया तेरी सच्चाई पर शक करने लगेगी। तुझे अपनी सच्चाई की रक्षा करनी है प्रभु, मेरे शंकर को वापस ले।
0: अब तो डिंपल कपाड़िया नानी बन चुकी हैं और इनके पति राजेश खन्ना का देहांत हो चुका है, पर फिर भी डिंपल कपाड़िया फिल्मी पर्दे पे नजर आती रहती हैं और बड़े अलग किस्म की फिल्में करती हैं।
2: हेलो,
5: इनकी सुनो, यहाँ पर सब यही समझते हैं कि जो इसको पता है वो किसी और को पता नहीं, बस यही दो हम लटक के सटक जाते हैं।
0: महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जान।
6: तो श्रोताओं, एक ये छोटा सा ऑडियो फीचर था ऑन लाइफ ऑफ डिंपल कपाड़िया, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अजय, एक गाना था जिसने एकदम धूम मचा दी थी जब बॉबी आई थी, याद है?
7: बॉबी का गाना?
6: हाँ, बताओ।
7: एक तो आप बजा चुके हैं।
6: हाँ,
7: हम तुम्हें कमी बने।
6: हाँ हाँ, एक और गाना था जिसने बड़ा हर जगह एकदम।
7: अब आप सुनाई दीजिए।
6: चलो मैं सुनाई देता हूँ।
8: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए

0: तो अजय ये था गाना। इस गाने ने भी बहुत धूम मचाई थी और इस गाने के बाद जो पत्नियों की धमकियां जो हैं वो बेकार हो गई थी कि मैं मायके चली जाऊंगी, तो पतियों ने उसको सीरियसली लेना बंद कर दिया था।
1: और मेरे ख्याल से काले कौओं की कमी पड़ गई थी, झूठ तो सभी बोलते हैं।
0: तो दोस्तों आशा करता हूँ पसंद आया होगा। जी हाँ, ये किसी ज़माने के बहुत ही हिट गाने थे। चलिए सुनते हैं एक स्पॉन्सर का संदेश।
2: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters, authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
0: श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।

0: श्रोताओं, ये गीत था फिल्म सागर से, ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया, और 1985 की ये फिल्म थी। थैंक यू।
1: तो जब शुरू में आए थे डिंपल, तो जी मतलब अपने रंग रूप के बूते पे लगता था कि आए हैं, और मतलब सेक्स अपील थी उनकी। पर जब वो सागर के बाद में उनकी एक सेकेंड इनिंग शुरू हुई, तो मतलब उनमें वाकई एक एक्टिंग की प्रतिभा थी। उन्होंने मतलब इतने दमदार रोल किए थे, और 80s और 90s में बिल्कुल वो छाई रही। मतलब डिंपल काफ़ी बड़ा नाम था हीरोइनों का, तो कई सारी मूवीज आई, कुछ चली कुछ नहीं चली, कुछ बड़े आइकॉनिक फिल्म थी। जैसे सागर के बाद में फिर एतबार, अर्जुन और जज्मा आई, फिर आई मूवीज जिनका नाम था काश, इंसानियत के दुश्मन और इंसाफ, फिर आई राम लखन और औरत। फिर एक दौर ऐसा आया वहाँ पे जिन्होंने जो कहा जाता है पैरल सिनेमा, तो उसमें काम किया, और उसमें भी मतलब जो पिक्चरें बनी, कई बार ऐसी होती है कि बस एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए बनती है, पर काफ़ी फेमस हुई वो पिक्चरें, जिसमें कुछ मूवीज हैं जिसका नाम है, एक है रुडाली पिक्चर,
0: रुडाली
1: आपने देखी होगी, रुडाली पिक्चर। तो उसमें होता कि वो अपनी ज़िंदगी में जो है मतलब एक दुख है उनका, तो उसको व्यक्त नहीं कर पाती है। फिर उनको प्रोफेशनल एक जो है मतलब वो होता है राजस्थान की तरफ
0: जी, जो
1: हाँ आके के रोते हैं, तो उसकी जो है भूमिका निभाई थी, बड़ी अच्छी पिक्चर थी।
0: एक गाना भी हमने सुनाया
1: था, आपने गाना सुनाया था, एक गुलजार साहब की मूवी थी लेकिन,
0: अच्छा
1: वो उसमें उन्होंने काम किया था। और एक आई थी दृष्टि, जो कि गोविंद निहलानी ने बनाई थी
0: जी,
1: दृष्टि। तो ये बड़ी सशक्त मूवीज नहीं रही थी उस पैरल फिल्म के जो है मूवमेंट में। फिर आई काफ़ी शक्तिशाली, उन्होंने रोल किए जैसे प्रहार में किया, अंगार, गर्दिश, और एक मूवी आई थी क्रांतिवीर
0: जी, जांबाज,
1: हाँ जांबाज, वो जो मतलब फिरोज खान की थी, वो ड्रग एडिक्शन से डील करते थे। एक मूवी थी जख्मी शेर शायद, तो उसमें था कि जो है वो पुलिस ऑफिसर रहती हैं, और पुलिस ऑफिसर रहते हुए उनका रेप होता है, तो फिर वो कम्युनिटी को मोबिलाइज करती हैं जो उसके खिलाफ, और फिर वो बदला लेते हैं उसके खिलाफ। तो ये है कि कहते हैं कि क्या राजेश खन्ना से संबंध था, तो वो घर छोड़ के चली गई, फिर भी शायद कांटेक्ट में रहते थे। और जैसा कि फीचर में बताया गया था
0: जी,
1: कि साथ में एक पिक्चर उन्होंने शुरू करी थी,
0: अच्छा,
1: जय जय शिव शंकर,
0: हा, हा, हा।
1: पर वो पिक्चर पूरी नहीं हुई, कभी रिलीज नहीं हो पाई। और राजेश खन्ना हम सब जानते हैं कि उन्होंने इलेक्शन में भाग लिया, तो जाके डिंपल ने कैंपेन ही करी राजेश खन्ना के लिए। तो कुछ गाना वाना सुना रहे हैं आप?
0: बिल्कुल, गाना सुनवा रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक जांबाज फिल्म का गाना सुनवाता हूं, और आप हमारे सुनने वालों की प्रतिक्रिया भी पढ़ दीजिए इस गाने के बाद।

0: श्रोताओं, आपने हमारा कार्यक्रम सुना और अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे दी, तो आइए सुनते हैं कि हमारे सुनने वाले क्या कह रहे हैं। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं, संजीव जी की बुलंद आवाज़ में कार्यक्रम का शुभ आरंभ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आप ही के चेले हैं हम लोग सब। शिक्षाप्रद विचार और मधुर भजन। प्रदीप उपाध्याय जी कह रहे हैं, विश्व योग दिवस पर अत्यंत सुंदर आज का विचार। आशा करते हैं श्रोता इस संदेश की उपयोगिता को समझेंगे तथा अपना जीवन बेहतर बनाने की ओर प्रयास करेंगे। धन्यवाद उपाध्याय जी। लीला तिवानी जी कह रही हैं, संजीव जी की बुलंद आवाज़ में समाचार और सुविचार मन को मोहित कर गए। लीला जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय केदार जी की मधुर आवाज़ में यह जीवन के लिए प्रेरक भजन। लीला जी, ये कवि कुमार विश्वास जी ने गाया था और उन्होंने लिखा है कि आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ इस दिन विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी दिवस के जरिए पृथ्वी पर जल का हाइड्रोग्राफी दिवस के जरिए पृथ्वी पर जल भंडार की जानकारी दी जाती है। आप जानते ही हैं कि जल ही जीवन है। पृथ्वी पर पर्याप्त जल भंडार होगा तो हम पर्याप्त जल पीकर खुद को डिहाइड्रेट से बचाकर स्वस्थ रह सकेंगे। स्वस्थ रहकर ही हमारे मन से संगीत लहरी का निर्गमन होगा और स्वस्थ रहकर ही हम योग भी कर सकेंगे। यतिंदर गुप्ता जी कह रहे हैं, हम तुम एक कमरे में बंद हो। गुप्ता जी किसके लिए कह रहे हैं, जरा क्लियर करिएगा। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं, ओ नो ऑडियो, बीच में उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लीला तिवानी जी कह रही हैं, बहुत बढ़िया गीत के लिए बधाई। यतिंदर गुप्ता जी कह रहे हैं, क्यों कोई नाटक सीख भी सकता है? क्या कोई नाटक सीख भी सकता है? तो अजय, ये आपके लिए प्रश्न है। और कह रहे हैं कि हॉल कैन बी एट रीजनेबल प्राइस फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद एनी काउंसिल। लीला जी को साक्षात्कार बहुत अच्छा लगा। और सत्या खन्ना जी पूछना चाह रहे हैं कि प्ले कोई और भी तारीख को है या खाली 4 जुलाई को? तो उसका शायद अजय जी ने आगे जवाब भी दिया है। गुप्ता जी कह रहे हैं, वेरी नाइस सॉन्ग्स लिसनिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। जी हाँ गुप्ता जी, हम लोग का यही प्रयास रहता है कि जो भूले बिसरे गीत हैं, जो समय की व्यस्तता में नहीं हम सुन पाते हैं, हम अपने कार्यक्रम में लाएँ और आपको उम्र के उसी पड़ाव पर वापस ले जाएँ। सुहास राणे जी, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। यतिंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं, दूर से बुझती रही प्यास। गुप्ता जी आज बहुत क्रिप्टिक मैसेजेस भेज रहे हैं आप। डॉक्टर अजय गुप्ता ने चेक करके बताया कि प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आई विश टू चेक विद द प्रोड्यूसर। हाँ, नो नॉट एट दिस स्टेज, जस्ट वन शो ऑन 4th जुलाई, ये दीनशाह जी ने बोला है। गुप्ता जी को कुमार विश्वास की वार्ता पसंद आई। काफ़ी लोगों ने आंसर दिए हैं, वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ताकि अगर किसी और को भी जवाब देना है तो दे सकते हैं। और लीला जी को कुमार विश्वास की 4 धाम यात्रा रोचक तो थी और बहुत ज्ञानवर्धक भी थी, उन्होंने कहा। और प्रदीप उपाध्याय जी बता रहे हैं कि किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, हसन कमाल की बहुत खूबसूरत गज़ल, सुनकर मज़ा आ गया। भप्पी लहरी का संगीत है जिनको हम एक बहुत ही तड़क भड़क संगीत के लिए जानते हैं, लेकिन इस गज़ल को सुनकर विश्वास नहीं होता कि इसको संगीतबद्ध भप्पी लहरी ने किया है। उपाध्याय जी, आपको मिस करा है इस प्रोग्राम में। आपकी जो संगीत की, म्यूज़िक की, फिल्मों की जो नॉलेज है, वो हमेशा कार्यक्रम में 4 चांद लगा देती हैं। ऋचा जी कह रही हैं, ऑल सॉन्ग्स आर माई फेवरेट, इन्जॉइंग। शिशिरेंदु झा जी बोल रहे हैं, ग्रेट सॉन्ग्स। राजीव निगम जी, आप बहुत ही हमारे पुराने सुनने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। रियली वेरी नाइस टू हियर वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, थैंक्स दर्पण। प्रदीप जी कह रहे हैं, बहुत मधुर गीतों की श्रृंखला, बहुत मनोरंजक। और राजीव निगम जी को डिंपल कपाड़िया की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद। लीला जी को भी डिंपल जी का फीचर जो है बढ़िया लगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ कुछ प्रतिक्रियाएं। हेमलता जी ने भी पहेली का उत्तर दिया और बोला है कि वेरी एन्जॉयबल प्रोग्राम। तो दोस्तों ऐसे ही आप जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इंटरैक्ट करते रहिए, उससे हमारी भी बहुत खुशी में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। चलिए अब एक और बढ़िया सा गाना सुनते हैं और
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: मिल गया लोगों से पूछने को कहा था, तो हमारे पास सही उत्तर आए हैं। पहली पहेली जो थी वो थी कि डिम्पल कपाड़े के बहन का नाम बताएं, तो उसमें कई सारे सही उत्तर आए। मैं जल्दी से नाम पढ़ देता हूँ। जो सही उत्तर है जिन्होंने बोला था वो है हेमंत थोंढी, हेमलता जी, राजीव जी, रेणु जी, सुभदा जी, मोहिनी जी, लीला तिलवानी जी, अरविंद वर्मा, आरजे संजय, मंजू मल्होत्रा, चेतन शाह, सुधा और संगीता। और जो इसका पुरस्कार जाता है पली का वो है संगीता जी को, वो हमारी पहली की विनर
1: है। बहुत बधाई संगीता जी।
0: और दूसरा हमने सवाल पूछा था कि आप एक ऐसे थिएटर का नाम बताएं जो मुंबई में जो कपूर खानदान से जुड़ा है, तो उसका सही उत्तर था कि यह है पृथ्वी थिएटर। तो इसके भी कई सारे सही उत्तर आए जिनमें है हेमंत सोंदी जी, सुधा जी, सुभदा जी, रेणु जी, आरजे जी और रीता। और इसका जो विनर है वो है रीता जी।
1: चलिए, तो बहुत बहुत बधाई
0: आपको, मतलब ये टिकट पहुंचाएंगे आपके पास।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम, डिम्पल कपाड़िया के ऊपर आधारित था। उन्हीं के गीत सुनाए और उनके बारे में आपको काफ़ी जानकारियाँ दी, और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और अब हमारा इस सप्ताह के कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है, और अगला मराठी भाषा का कार्यक्रम है जो भी बहुत शानदार होगा, तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा। और अगले सप्ताह फिर आपसे भेंट होगी। चलते चलते आपके लिए एक और बहुत खूबसूरत सा गाना छोड़ते जा रहे हैं।

श्रोताओं, एक जानकारी आपको और देनी है कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है 28 जून को, जो कुटुंब की ओर से मनाया जा रहा है। समय है हार्वे लव पवेलियन कासिल हिल में, और ये है सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इंटरनेशनल योगा डे हार्वे लव पवेलियन कासिल हिल में 28 जून संडे को 7 बजे से लेकर 10:30 तक।

नसे दुजा मज नको औषधे योग हवा योग हवा। काम क्रोध मद मत्सर माया जर जर करुणी टाकिती काया। आहार चुकता विहार चुकता समतोल